0: पूरे 90 सालों से नॉनस्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: আকাশবাণী আগরতলা শুরু হচ্ছে কক্সবাজার অনুষ্ঠান হাইমনি খোরাং।

0: खुलुमका जतखनाय टंनायरावनो नरखनाय टंङ अल इंडिया रेडियो आगरतला ककबरक निपान्दा आं राकेश तिनि निपान्दाव जों रेडियो बिसिसुखुसि एबा 90 इयार्स पुंमानतै ककथाजथायनि सालायनाय आ ककबरक ककतै कग्रुबाय आबायथानि रेडियो बेलायनो सुबामं टंङ जों तिनि खरकसा सिखरोंनो मांखा बरम गोनां मधुसुदन देव बर्मानो हिंगे जों पयलावनो सारनो खुलुमबो
1: औ खुलुमो जतखनाय टंनाय टाखुकतै बखुक संनो नरखनोबो तै रिंगमानी बागै बेलायखाना हमबाय चिनि ताकुक राकेश नबो।

0: आउ हाइनाइ कक्तुक नाइगिना अजोरा शब्दं तिनि किसा आसिन र कक्तुक ब जुंगजाल तंगमनि बगै सं काम के कक्लाम शेन
1: हेलो हेलो
2: हेलो
1: कुन कहाम ताको
2: कहाम मेरा
0: आउ शाबा सगरा दे
2: पिजलन गिसरे चाबे
0: आउ लाम शबो तिनि पांदाओ द तिनि तिनि नि कक पथमान रगे कक्लाम शेन नगेना ই খাই দাও তাকো নং সাদি আনি খরাং মোবাইল ফাইয়া ও আও আং পুলেন সাকা কিসা তিনি চিনি কক দুক ও কিসা
2: আমি

0: FM 80. क्या एफएम मुझे खाई तंगना इखा नेता को गई बुक सुना हाई हाई लाम सगो बेला बेला हम बाई अजर नरक एफएम उज्जैन तो खाई तमान बगे वेल नरक सही मैं एलम कर पांडा हंगे तो अमाइन खरस एलम कर तुवी फेयू अंथंग बो सिंगी मानो बो रजाबना अंगी मानो बो तामना मुसुबना एवं पदर पदर सामू बाई बेलाखनो गरंगी सिंजा सिने हास्य चीनी बड़ो बिंगो अमाइन संगे ब्रम ब्रम खरसा खरसा नौने बेसंग तुवी फेयू वेल अमुख अल्लाम करें पांडा एफ एम उज्जैन तो हाई हाई अल्लाम सौ जो नो आं तीन फाइ सौ पैके चम्पक नगर चम्पक नगर फाइजिंग फाइ सौ पैके और कैसा कमी बेलफांग और आं सौ पैके हाथाई मूरा अजागा बेलाई नाइथक और नाइखें तो तमी सना आस के टोंथक तबुनी ओ मल हम तो नगर से बी बेलाखन खाले टोंथे फै आउ बुफांग ब्लाई कताल कताल रतनी भाई मानी जरा तबुक टक्सा तमिली पुमानी जरा बसुक से जरा तब नाइथक एवं मानो फाल्गुन ताल लाइथंगा कुंकिला पुंगानी जरा एफनो कुंकिला रुस पुंगा खाना हरि दंसु आसके टोंथक तीन आं बेलफांग कमियो आं खरक्सा बुखुक नि खरंगना नरनो खाना रनो बेलाखेन सिनमुंग मानजाक रसा मुंकरन खनिने नायने लेने खनायने लेने बबे कक साइने लेने बिनि लाइबुमा बाहे बबतै बिनि लांगमान कथमारक बबतै सिंतिनि साइमानान आं फाइका बिनियर नक दुखों बेलाय हाफुं कामां कामां फाइसोबाकेर बुखुक आं फुलेनो निनि सिनमुंग दानान बागै कयो लामसोगो एलम गरन पानो
1: हामबाय ताखुक ताइ अक बुखुक संनो तिनि
0: बुखुक निनि मुंखे तामखा
1: आनि बुखुंके पूर्ण रुपिनी

आशिक जरा जिन एलेमग्रिन बांदाओ एलेमग्रिन नी खरक्षा एलेमग्रिन बुखुक पूर्ण रूपिनी बिनी लांगमानी गोग्रक जिन खनालाय क्या ते बायथांग बो बबाहाय के सिनि जागै दं आबरक नबो जिन खनालाय क्या बिनी खुब दिनो गासक जरा ते नरक जतनो खनाबाय खना बिनी लांगमानी गोग्रक ते बाहाय के बखरक्षा एलेम ग्रं हंजाका आबरकनो दै बनरक सायमानखना गफादि हजराव नायलायनाय दाबु सुजरा मानमानि गकबर गकतमा बुबाग्र मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदि सालदकनि बुइहा बेरायमाव तिनि आबुधाबिव थांगानो मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदि मिया दिल्ली गदाल संसदजाक ब्रिक्स बुइहा मन्त्री रकनि कक्लाम सालायमाव मानजाक फायनाय बुइहा मन्त्री रक बाय मालायखा हास्टेफा इन्द्र सेन्ना रेड्डी नालु शाखा अपारेशन सिन्दुर सेंक्रा रकनि बाबायो भारतनि फान्न फुनुगै रेखा मंत्री अकर प्रफेसर डॉक्टर मानिक शाह शाखा हस्ते हापांग नैसाइची चार चिचुको रंग विशिनी सिमी दाबुक जरा हस्ते दाई इन हार्नेस नि खबई बेबागे खरक नैसाई चुकुरा दोकची सेवक तलांगजाखा चामुंग मंत्री सुशांत चौधरी शाखा हस्ते पेट्रोल डीजल तै चामुंग नि माने नांगमानि सखाति जाक दंगो पंडित दीनदयाल उपाध्याय फ्रंगमुंग महा अभिचान्य बागै मियानि सिमि हास्टेव चेंजाखा बिजेपि मंडल बेरेमनि फोरोंमुं सिबिर बिजनेस रिफर्म्स हाक्तर गोनाङै पुइला थाय मानखा त्रिपुरा हास्टे पुलिसतै ब खरक चुकुरा जिड कन्स्टेबल तलांजागानो गुमटि हांकर काक्राबन मेलागर टिला रोंनख्लाव मिया हरनि सिमि चेंजाखा नखा सालनैनि हास्टे बेरेमनि चरक बानिक तै गाजन तेर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद मुकुमो उमर नैचि विशिनी फुटबल नि बसंनि बातायलायमाव त्रिपुरा ग्रुप नि उलनै थोंलायमाव गोबलाय ओंखा बस्कां दामने चिब्रियो हास्तेनि सालथां उनकुटि दलाय ते खुवाय हांकर फेरांकगै दामसाव ब्रेजिनि सिमि बाजि किलोमिटार दवै नबारवाथै फायमानोहिनि हजाकमुं रेखा नबारतैबार नायखौ तिनि सालनि तुंमारि साखाव 33 डिग्री सेल्सियास ते खामाव 24 डिग्री सेल्सियासनि गानागिनिव दंगाना आसुजरा खोनाबायखा दाबु सुजरा मानमानि ककबर ककतमा बुबाग्र गेजिं दाबुक जेंलायनाय जादुनि खरां बान्दा।

खुं साल पालायनानि बागै अ साल न जङैनो हारजागौ आबनिया आगुनि सिमिन' 1994 बिसिनि सिमि तिनि हाय सालनि सिमि बिसि बुरुं बुरुं न तिनि हाय साल न हायुं नुखुं साल होनि पालाय जागै फायुं दाबो सुंजारा गोबां मा मथा रोंन एबा गोबां मा हदानि मथार असाल न पालाय नुखुं बेलाय नांगौ नुखुं थानसा नुखुं खा बाक्सा आबो जों बर' रकनि न खा बाजारों जों जे सा सामुखौ मुंबानो खालायनानै होनगानखे नकनि अख्रा जाग्रा रावनो जों सोंगै खालायो हाया दाना ओंखाय फायदि टेबो गोबां नखक सालायनाय ओंखाय अजाराव हायनोहाय रोजाबुं दांसा खोनालायफिनाय खोनादक रोजाबुं नरकनि बागै खाख्लायो अ रोजाबुं नरक खोनादक जागोन खोनाय दं दि दै लगे दं दि ट्युनखाय दं दि 101.6 मेगाहार्स FM उज्जैन दनाव

जरो छन हाजादुनी खोरांग पान्दा व खना ततो खले चापुङ खनालाई दङ हम सपुङ नि चापुङ लोक्सन खनालाई दङलायो अंके हजारो खा क्लायन रोक जे चापुङ खनाई दङ र उच्च तनो खातन कना तंग तो कना र चापुङ लोक खना तक सक पाइ खना हाले आ अंके सं साइमानो तिनी हायुङ नुखुङ शाल अंकै जों नोक नुखुङनि हमसाक मुं सुख जराते नांगुक मानी आबरक नुतै न किसा मिसा जे साइमान मानी नरक पाइ शेयर खाइ दङ ते नरक पाइ सालाइ दङ ते गोबां मा नुक मानी रक नुन जों सावै दङ आ जों जतन नुगु हाय दबा गोबां मा जेराय रक जों नक नि सिमिनो सुरंगु हाय दबा रमदि जे नुखुंगो जेराय रक नि बिसकांगो बबो हाइके अक्रा जागार रक ककसा आबो चराय नि सिमिनो सुरंगै फायो जों सांग बाय थांबो आबो हाइनो दै दुल जागे सुरंगै फायो हाय दबा जे दिखे चिनि माफा हनजाक नाय रक फानों खा एबा रमदि खरकसा बो फापानो बुमा हनजाक नाय बाय बबो हाइके ककसा बो कक थाय बो सुर बबो हाइके ककसा आबो र काइचोमुइ दङ एबा नुगुइ दङ नासिगै दङ हाय दबा अंके तमुंग नो खरकसा बुफा हनजाकनाय फानो बुमानो शाक नांगयाकाय ककसाका एबा खरकसा बुमा हनजाकनाय फानो बुफानो लुकु बिसकांगो एबा अक्रा चाक्रा रंनि बिसकांगो एबा गोबां मा लुकु गाना गिनिनि बिसकांगो नो जे खुब फायदै जे मुचुंदै हनका खरां कतरबा खायफानो ककसाका एबा जेस खायफानो ककसाका खरकसा चेराय एबा बसा हनजाकनाय नुगुइ दङ सिउइ दङ अंके द्रुक द्रुक बबो हाबाहाय केन कक सानानि सोनांगौ हायनि बागै न नक नुखुंग बबो हायके जेराय न ताल फिख्लाय थानि दैदुल थानि नायकल थानि बरंनि बोसकांग बबो हायके कक

रोखनाय थंगो साराजा पॉइंट ऑफ मेगाहर्ट्ज एफएम उजेंत जराव स्टुडियो आ सुखजा खांग बिनोता हंके ताबो आचिनि स्टुडियो नि जरा खगो तामै थंगो दिपोनि दामनि तामै सतिकाय सांगै मुफ्ले ब्रिजेस नि अंजा खंगा जराव नरब जतन न हाय न हाय दाम सुखो ते जतन न बला बला के हम बाय 101.6 मेगाहर्ट्ज एफएम उजेंत न ट्यून खलाय थंग मनि बागै के नरब नि बागै कैसा साखलाय मु आ तिनि आगरतला नि सुकांत एकेडेमी ओ क्लासिकल म्युजिक कन्सर्ट नानी बखा थांगी दंगो चीनी आकाशवाणी नि फिल चुकुची बिशी पुंगमानो रगिनो आलायदा पांदा जुगले जाखा गाय अनरक जतन न फाये मानजा फायना बागै फाये नायनानि बागै जतन न चीनी आकाशवाणी एफएम उजेंतनि अंगै जतन न कबक जाओ आरक जतन फाये मानजा

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू

0: मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत

0: भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
2: अंडर द थ्री पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयास

0: के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। IPL क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।